0: Ko Fresh FM tēnei e pā oho ana mai I te tau ihu. This is Fresh FM broadcasting from Top of the South. Ko Whitu Karaka I nāianei. It is 7 o'clock.
1: नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विनीता चंद्रा आपके साथ आपके लिए एक नया कार्यक्रम लेकर आ पहुंची हूं फ्रेश एफएम पर। दोस्तों, मेरे कार्यक्रम का नाम है विमेन्स वर्ल्ड, यानी महिला जगत। यहां हम महिलाओं के जीवन से जुड़ी खास बातें करेंगे और सुनेंगे उन्हीं की जुबानी, उनकी कहानी। और दोस्तों, साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी बॉलीवुड म्यूजिक। तो बने रहिए मेरे साथ शनिवार शाम 7 बजे। मैं विनीता चंद्रा और आप सुन रहे हैं फ्रेश एफएम।
2: डिस्कवर हाउ हाउसिंग कैन शेप वाइब्रेंट रेजिलिएंट नेबरहुड्स। ट्यून इन टू द होमफुलनेस शो, अवेलेबल ऑन ऑल पॉडकास्ट एप्स, द कॉमन ग्राउंड यूट्यूब चैनल और एट commonground.net.nz/show, एज वेल एज फ्रेश एफएम। ब्रॉडकास्ट थर्सडेज एट 11 AM विद अ रिपीट एवरी फॉलोइंग थर्सडे on 107.2 Nelson, 104.8 Nelson Tasman, 95 Takaka, and 88.9 Blenheim.

नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विनीता चंद्रा आपके साथ आपके लिए एक नया कार्यक्रम लेकर आ पहुंची हूं फ्रेश एफएम पर। दोस्तों, मेरे कार्यक्रम का नाम है विमेंस वर्ल्ड यानी महिला जगत। यहां हम महिला